0: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर वक्त हुआ है संगीत माला का, जिसका आपको हमेशा से इंतजार होता है क्योंकि शनिवार का दिन होता है और हम आ जाते हैं आपके मनोरंजन के लिए आप ही का शो संगीत माला लेकर. और संगीत माला हमेशा से मैं करती हूँ और मेरे साथ विनीत जी होते हैं, मनीष जी होते हैं. तो आज मेरा साथ देने वाले हैं
1: आपका होस्ट और दोस्त विनीत.
0: और विनीत जी हमारे साथ एक स्टूडियो में गेस्ट भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं आपको, आज का वेदर बहुत अच्छा है और आज काफ़ी कुछ हो रहा है सास्कटून में ना विनीत जी. शायद गुजराती समाज की पिकनिक भी हो रही है मंदिर में, एज यूजुअल सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं. और
1: मंदिर में भी आज शाम को जगराता है माता का, तो स्पेशल गेस्ट आए हैं पंजाब से और हमारे जो पॉपुलर सिंगर हैं भरत शर्मा जी यहाँ पे उनके साथ इवेंट परफॉर्म करने वाले हैं. तो काफ़ी हर्षोल्लास का प्रोग्राम होगा शाम को. तो मैं चाहूँगा कि जितने भी माता रानी के भक्त हैं शाम को ठीक 7 बजे हमारे हिंदू समाज ऑफ सस्कैचुअन का जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण लारोंज रोड पर, वहाँ पे पधारें और भक्ति में तल्लीन हो.
0: ज़रूर ज़रूर भक्ति हो और अच्छे से कोई बाहर से हम गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे भी भजन सुनने का जो आनंद है वो कुछ सबको मंत्र मुग्ध कर देता है. जो आप ही के शब्द में कहूँगी, हमेशा से आप मंत्र मुग्ध शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है. और विनीत जी एक बार हमारे स्टूडियो का नाम हमारे लिसनर्स को बता देते हैं.
1: एब्सोल्युटली, नंबर है हमारे स्टूडियो का 3062425002 और आप बेशक इस पे हमें कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त भेज सकते हैं और कोई भी गाना किसी को डेडिकेट कर सकते हैं. आगे कैसे बढ़ेंगे नीपा जी, आप बताएं.
0: आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन देखिए मैंने कहा ना कि आज हम एक बड़े सिंगर के बारे में भी बात करने वाले हैं और हमारे गेस्ट में, हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट भी आए हुए हैं. तो मैं चाहती हूँ पहले हमारे गेस्ट के बारे में हमारे लिसनर्स को बता दें कि आज हमारे साथ आए हैं.
1: आज हमारे साथ, हमारे समक्ष मौजूद हैं श्री प्रज्ञेश पटेल जी. प्रज्ञेश पटेल जी जो हैं वो हमारे हिंदू समाज ऑफ सस्कैचुअन के प्रेसिडेंट हैं करंट, और हमारे सामने ही बैठे हैं. तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रज्ञेश जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूं और थैंक यू अगेन आपने मुझे इनविटेशन दिया
1: जी.
2: सुनीपा जी और अभिनीत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पे स्टूडियो में आने का.
1: नो, थैंक यू वेरी मच. हमारी भी ये खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ बैठे हैं और ये प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं. तो नीपा जी,
0: हाँ जी, तो हम प्रज्ञेश जी आपसे भी बातें करेंगे, लेकिन आज हम बॉलीवुड की वो सिंगर हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनके पिता भी बहुत ही फेमस सिंगर कम डायरेक्टर रह चुके हैं और जिनका नाम है किशोर कुमार जी. उनके पुत्र अमित कुमार जी के बारे में हम आज के प्रोग्राम में उनके गाने बजाएंगे. और सबसे पहले मैं किशोर कुमार जी का फिल्म आई थी दूर गगन की छांव में, उसका एक बेहतरीन गाना है आचल के तुझे मैं लेके चलूं, तो वो गाना मैं हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहूँगी. उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए हम सबको पता है किशोर कुमार जी जो हैं वो उनका फैमिली जो था पूरा वो फिल्मी बैकग्राउंड रहा है. अशोक कुमार जी, अनूप कुमार जी वो जो भाई थे उनके, वो भी फिल्मों में ही एक्टिंग किया करते थे. और किशोर कुमार जी के तो बारे में किसी को भी कुछ बोल नहीं सकते, सबको उनके बारे में पता है. और उन्हीं के घर में रूमा गांगुली और किशोर जी के बेटे अमित जी रह चुके हैं, जिनका जन्म हुआ था कलकत्ता में. और देखिए फिल्मी बैकग्राउंड था, उनकी जो मम्मी थी वो भी बहुत ही अच्छी गायिका हुआ करती थी और उनकी पूरी लाइफ म्यूजिशियंस के बीच में, सिंगर्स के बीच में हुई थी. तो सबसे पहले मैं किशोर कुमार जी का उन्हीं के साथ अमित जी ने फिल्म में काम किया था दूर गगन की छांव में, तो वो फिल्म का गाना जो मैं कहती हूँ आचल के तुझे मैं लेके चलूँ, ये
1: एब्सोल्युटली. और क्या आपको पता है इस गाने के म्यूजिक डायरेक्शन के लिए और लिरिक्स लिखने के लिए भी किशोर कुमार ही जिम्मेवार हैं
0: जी, क्योंकि ये उनके खुद का होम प्रोडक्शन था.
1: एब्सोल्युटली. तो चलिए सुनते हैं दूर गगन की छांव में आचल के तुझे मैं लेके चलूँ.

0: उनके साथ थोड़ी
1: गुफ्तगू करते हैं,
0: गुफ्तगू कर लेते हैं।
1: एब्सोल्युटली। तो प्रज्ञेश जी, सबसे पहले तो अगेन हम दोनों आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो पर, और कुछ सवाल हैं हमारे पास जो हम आपसे एक के बाद एक पूछेंगे। वो ज़्यादा संगीन तो नहीं होंगे, काफ़ी कैजुअल होंगे।
0: और पर देखिए, जब हमारे स्टूडियो में कोई गेस्ट आता है तो उनको भी कुछ मैसेज देना ही होता है हमारे कम्युनिटी को, तो उसके बारे में भी हम आपसे बातें करेंगे।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो हम सबसे पहले आपको ये पूछना चाहते हैं कि आपका सास्काटून में या कैनेडा में आना कब हुआ और क्या रीज़न था?
2: सो कैनेडा में मेरा आना हुआ था 2010 में। सो जैसे ही सारे स्टूडेंट के जो इंडिया में पढ़ते हैं तो उनका एक ख्वाब होता है कि बाहर जाके पढ़ाई करें।
1: जी।
2: सो मेरा भी पहले से ही एक सपना था कि मैं कैनेडा जाऊँ या US जाऊँ पढ़ाई करने के लिए। तो फिर हम लोगों ने जब एक्सप्लोर कर रहे थे ऑप्शन, तो उस टाइम पे हमारा मेन फोकस था कि हमें US जाना है, बट उसके बाद डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, तो हम कनाडा आ गए 2010 में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। टोरंटो में हमने स्टडी किया था एक साल का। उसके बाद सबको पता है कि इमिग्रेशन की वजह से लोग मूव होते थे, तो हम भी टोरंटो से सास्कटून उसी टाइम 2011 में, अर्ली 2011 में इधर मूव हुए थे। उसके बाद यहाँ पे काम किया, फिर परमानेंट रेसिडेंसी ली। और मंदिर, हमें पता था कि मंदिर है वो सास्कटून में, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कभी मंदिर जा पाऊँ। तो एक दिन अचानक से आई थिंक 2014 या 2015 में मैं कहीं जा रहा था, तो पाइन हाउस में मैं रुका, तो वहाँ पे कोई बता रहा था कि मंदिर इधर ही है। तो मैं वहाँ मंदिर पे गया, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि वहाँ फंड रेसिंग चल रहा था, जो गीता भवन बन रहा है उसका फंड रेसिंग चल रहा था, तो वो डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने पहली बार मंदिर की दर्शन की और डोनेशन दिया था, तो मुझे लगा कि यहाँ आना चाहिए, प्रायोरिटी बनानी चाहिए हमें हर संडे को। तो धीरे धीरे करके फिर मैं मंदिर में आने लगा, और उसके बाद
0: देखिए यस वही है, आज ईश्वर के साथ एक बार हमारा कनेक्शन हो जाता है तो फिर आगे तो स्काई इज योर लिमिट। सो आप यहाँ पर तो अच्छे से आ गए थे, वो हमें पता चल गया, लेकिन अभी आप कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और आज कुछ खास रीज़न है कि आप कुछ कहना चाहते हैं कि कोई इवेंट आ रहा है उसके बारे में भी आपको कुछ कहना है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मनीष विनीत जी, सॉरी, देखिए हमेशा मनीष जी और विनीत जी के बीच में मेरी गड़बड़ी हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे अमित कुमार जी की
1: जी।
0: और मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि अमित कुमार जी की जो पहली फिल्म में उनको जो फिल्म से उनको पब्लिसिटी मिली थी और जिस फिल्म के गाने के बाद उनको कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा था, राजेंद्र कुमार जी के बेटे कुमार गौरव को वो लॉन्च करना चाहते थे और फिल्म का नाम था लव स्टोरी, उसी फिल्म का जो गाना है वो हमारे लिसनर्स को हम सुना देते हैं।
1: एब्सोल्युटली, फ्रॉम द मूवी लव स्टोरी 1981, राइट? तो हम प्ले करते हैं, याद आ रही है, अमित कुमार द्वारा गाया हुआ, लता मंगेशकर जी ने भी इसमें गायकी करी थी, और एवरग्रीन आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिरिक्स।

0: याद आ रही है भाई, सबको याद आती है और हमें कॉल भी आने लगे हैं। और हाँ जी, हम प्रगेश जी आपसे पूछ रहे थे कि आज आप उस मुकाम पर हो और आप प्रेसिडेंट हैं अभी।
1: जी जी वो हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्केचुइन के प्रेसिडेंट हैं। तो मेरे पास एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे पूछूं प्रगनेश जी। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये जो सोसाइटी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इससे जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
2: सो सोसाइटी की शुरुआत जो मेरी जानकारी है वो अर्ली 1960 में हुई थी। उसके बाद थ्रू आउट द फेज होते होते फिर पहले वो वेदांत सोसाइटी के नाम से बना था ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद धीरे धीरे धीरे करके फिर फेजेस आने लगे, तो जो एग्जिस्टिंग टेंपल बना उसके बाद हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्केचुअन का फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन हुआ। और उस टाइम पे हिंदू सोसाइटी ऑफ जो एग्जिस्टिंग टेंपल है वो 1982 में बना था
1: जी।
2: उसके बाद फिर गीता भवन जो है हमारा एग्जिस्टिंग वो 2015 में बना था
1: जी।
2: जस्ट व्यूअर के लिए मैं बता दूं कि डेट साल कहीं इधर उधर हो सकता है,
0: क्योंकि
2: आई लाइक मुझे जो हिस्ट्री पता है उसी इसके हिसाब से मैं बताता हूँ। तो साल इधर उधर हो सकता है, तो मैं आपको फॉर्मली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई स्क्रिप्ट किया है।
0: यहाँ पे काफी सारे संगठन हैं और आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है।
2: या सो विनीत जी का क्वेश्चन था कि मेंबर कैसे बने। यूजुअली हमारी जो मेंबरशिप होती है वो एनुअली रन करती है, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक मेंबरशिप चलती है। और यूजुअली मेंबरशिप जो फ़ी होती है वो $100 है। तो जो भी व्यक्ति हिंदुइज्म में बिलीव करता है, हिंदुइज्म को फॉलो करता है, दे आर वेलकम टू बिकम अ मेंबर। सो $100 वो एनुअल फी पे कर सकते हैं।
1: एंड दैट इज पर पर्सन?
2: पर पर्सन,
1: ओके।
2: या और जब मंदिर में, क्योंकि हमारा जो करंट बायलॉ है उसके हिसाब से अगर मंदिर में कोई डोनेशन देता है थ्रू आउट द ईयर $100, वो भी अभी के लिए मेंबरशिप में काउंट गिने जाते हैं, बट पर पर्सन $100 इज द आस्क फॉर द मेंबरशिप।
1: और क्या इसमें जैसे स्टूडेंट्स हो गए या जो नए लोग, इनके लिए कोई अलग प्रावधान है मेंबरशिप में?
2: या सो करंट बायलो के हिसाब से अगर स्टूडेंट है तो उनकी मेंबरशिप हमने $25 रखी हुई है।
1: क्या बात,
2: क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है
1: जी,
2: अदरवाइज सबके लिए $100 है।
1: ये बहुत बढ़िया आपने स्टेप लिया।
2: और हमारे पास लाइफ मेंबर भी है।
1: अच्छा,
2: सो लाइफ मेंबरशिप हमने 2017 में बंद कर दी थी। सो उससे पहले जिन लोगों ने सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डोनेट किए थे थ्रू आउट दिस मेनी ईयर्स, देयर इज अबाउट 162 लाइफ मेंबर वी हैव। एंड देन टेंपल, द एग्जिस्टिंग टेंपल, आई गॉट अ करेक्ट डेट नाउ, इनॉग्रेटेड इन 1985 ऑन रामनवमी डे।
1: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रगनेश जी, थैंक यू ये इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो नीपा जी आगे कैसे बढ़ेंगे?
0: जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हो तो आप बता दीजिए।
2: सो मेरी वाइफ को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेरे रंग में,
0: मेरे रंग में रंगने वाली। अरे वाह, बहुत
1: एब्सोल्युटली। दोस्तों हम सुनेंगे मेरे रंग में रंगने वाली फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज, राम लक्ष्मण का म्यूजिक, देव कोहली साहब के लिरिक्स, सलमान खान और भाग्यश्री ने इसमें काम किया था, बड़जातिया फिल्म बैनर तले। तो ये गाना डेडिकेटेड है प्रगनेश जी से उनकी वाइफ खुशबू जी को। लेट्स हियर इट।

जी हाँ दोस्तों, ये गाना था प्रज्ञेश जी से उनकी वाइफ खुशबू जी को डेडिकेटेड, मेरे रंग में रंगने वाली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला गाना हमारे पास, और एक रिक्वेस्ट आई है हमारी रेगुलर लिसनर और हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचुवन की भी फॉलोअर किरण कालिया जी से, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है फिल्म शोर का एक गाना, एक प्यार का नगमा है, संग बाय नन अदर देन लता मंगेशकर एंड मुकेश साहब। लेट्स हियर इट फॉर किरण जी।

0: देखिए, बातें करते हुए हमें भी पता चला कि हमारे जो गेस्ट हैं प्रज्ञेश जी, उनका 6th of July को बर्थडे है। तो प्रज्ञेश जी, ये गाना हम आपको भी डेडिकेट करते हैं, हमारे जिनका भी बर्थडे है उनके साथ।
1: एब्सोल्युटली, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्रज्ञेश जी।

0: हाँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है और हमें फरमाइश भी इतनी ही आ रही है। और देखिए, हम लोग अमित कुमार जी के बारे में बात कर रहे हैं और किशोर कुमार जी हमेशा से कहते थे अमित कुमार को कि भाई तुम मेरी नकल मत किया करना, तुम अपनी खुद की अलग से आइडेंटिटी बनाना। और उन्होंने किशोर जी और अमित जी के जो रिलेशन था वो सिर्फ पिता और पुत्र का नहीं
1: जी,
0: था, उनका गुरु का भी था, वो
1: गुरु
0: गुरु और
1: चेले
0: चेले
1: का
0: का भी था। और दे आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, दे वर फ्रेंड्स।
1: या
0: तो यही जो कंफर्ट लेवल था दोनों
1: जी
0: के बीच में, तो अमित कुमार जी कलकत्ता में रहते थे क्योंकि उनकी डिवोर्स के बाद में वो अपनी मम्मी के साथ रहते थे और किशोर कुमार जी बॉम्बे आ गए थे। लेकिन वही पिता का जो फेम और नेम, और जब आराधना फिल्म रिलीज हुई तो किशोर कुमार जी पिक पे पहुंच गए थे
1: जी
0: और फिर अमित जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो चुपके से अपनी मम्मी से चुपके छुपा के महफिलें बनाने लगे थे और वो दुर्गा पूजा में भी उन्होंने गाने गाए थे। तो सब लोग ने उनको नोटिस करने की शुरुआत की थी, लेकिन जब उनकी माता जी को पता चला कि ये अमित तो भाई गाने गाने लगा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने किशोर कुमार जी से कंप्लेन की थी कि भाई ये
1: जी
0: ऐसे ऐसे कर रहे थे। किशोर कुमार जी बहुत खुश हुए थे और एक बार वो कलकत्ता आ गए थे जब अमित कुमार जी का कोई शो चल रहा था, तो उन्होंने वो सुना और वो बेहद खुश हो गए थे कि नहीं, मेरे बच्चे बच्चे में बहुत ही दम है, वो बहुत अच्छा सिंगर है। और फिर वो अपने आप अपने साथ उनको मुंबई पर लेकर आए थे। तो गानों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अभी अमित जी की बात हो रही है तो किशोर कुमार जी के भी हमें गाने की फरमाइश आ रही है।
1: एब्सोल्युटली. और प्रज्ञेश जी के एक परम मित्र ही हैं मिस्टर जय दवे जी. उन्होंने हमें अभी अभी कॉल किया और बताया कि इनका बर्थडे है, प्लस उनने भी एक गाना रिक्वेस्ट किया है जो कि दोस्ती के ऊपर भी है
0: हाँ हाँ
1: और डेडिकेटेड है हमारे प्रज्ञेश जी को भी. तो लेट्स प्ले द सॉन्ग
0: जी
1: नदिया
0: हाँ,
1: से दरिया.
0: फिर नमक हराम
1: हाँ जी
0: और किशोर कुमार जी की आवाज में गाया हुआ ये गाना

0: नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, क्या बात है दोस्ती के। तो ऐसे ऐसे गाने मौजूद हैं हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री में कि क्या
1: और
0: बात ही
1: दोस्ती
0: क्या
1: की
0: है।
1: बात की ना, तो मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रही है कि आपको तो पता ही है, राजेश खन्ना जी, किशोर कुमार जी, आर डी बर्मन जी की जो
0: तिगड़ी
1: टूटी
0: थी
1: थी, तिगड़ी थी, वो एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड थे। किशोर जी के जाने के बाद जब आर डी बर्मन जी ने और किशोर कुमार जी ने, मतलब राजेश खन्ना जी, हमेशा से चाहते थे कि अमित कुमार जी को हमेशा से गाने में लिया जाए, तो राजेश खन्ना
0: जी।
1: जी ने काफ़ी अपने गानों में अमित कुमार जी की भी आवाज़ हमेशा से लेने का, उन्होंने हमेशा से ये फोर्स करते थे अपने सिंगर्स को। तो
0: एब्सोल्युटली।
1: देखिए, रिक्वेस्ट भी हमें सुनानी है। और प्रदीप जी, आप कुछ हमारे, हमने सुना है कि आप कुछ बेनिफिट की बातें भी आपको हमारे बिजनेस को बतानी है, तो ज़रा थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालिए कि क्या है ये।
2: या सो हम लोग अभी हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचुअन के बिहाफ में वेजिटेरियन बैंक्वेट करते हैं। जब से आई थिंक 1985 से ये चल रहा है। ओनली टाइम हमने ब्रेक लिया था वो था कोविड के टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग नहीं कर पा रहे थे वेरियस रीजन से। तो ऑब्जेक्टिव था वेजिटेरियन बैंक्वेट का कि जैसे टेंपल, दो ऑब्जेक्टिव है उसके। सो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हमें टेंपल के लिए फंड रेजिंग करना है। तो यही हमारा बैंक्वेट इवेंट है जहाँ से हम लोग मेजोरिटी ऑफ द फंड रेज करके टेंपल को पूरे साल का जो एक्सपेंसेस है वो वहाँ से निकालते हैं। और दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग हिंदुइज्म, जो हमारी कम्युनिटी है विद इन सस्कैचुआन एंड सास्कैटून, उसको हम आउटर कम्युनिटी के साथ एक्सपोज करें। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इवेंट में काफ़ी सारे बार प्रीमियर ऑफ सस्कैचुअन ने अटेंड किया हुआ है, काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पे आते हैं, मेयर्स आते हैं, सास्कटून से लेके नियरिंग टाउन्स के काफ़ी सारे डिग्नेटरीज आते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम लोग उनके साथ जुड़ते हैं तो उनको भी एक समझ में आता है कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़ है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में उनको भी पता चलता है। सो एक पॉजिटिव मैसेज कम्युनिटी के अंदर जाता है। तो इस बार का जो फोर्ट इस बार 40 ईयर्स है, वो फोर जीरो या सो लोग अगर आप देखोगे तो बैंक्विट लगता है ऐसा कि एक पोस्टर नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा काम, बहुत सारी
1: जी जी
2: प्लानिंग जाती
0: बहुत
2: है।
0: मेहनत है।
2: और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो हमारे जो सीनियर जो लोग हैं उन्होंने ये 1985 से उसको बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ाया है, और ये अब हमारी बारी है।
1: जी हाँ, ऑफ कोर्स।
2: तो ट्रेडिशनली जो बैंक्वेट था वो यूजुअली पेरिलन पार्क या सास्कटून इन या टीसीयू प्लेस में होता रहता था। और मुझे अभी भी याद है कि इंदिरा जी, इंदिरा खोसला जी
0: जी
2: जो थी, वो उन्होंने जो बैंक्विट का जो खाना है बहुत सालों तक लीड किया था। बट उनके जाने के बाद क्या हुआ कि ब्लैक पेपर ने उसको लीड करना स्टार्ट किया था कुछ सालों के लिए। उसके बाद जब कोविड आ गया तो काफ़ी सारे
0: जी
2: रिस्ट्रिक्शन आने लगे वेरियस रीजंस की वजह से, लायबिलिटीज़ के, और कॉस्ट भी हमारी
0: बढ़ गई।
2: बढ़ती जा रही थी। सो जब हम लोग फंड रेजिंग की बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर उद्देश्य होना चाहिए कि फंड रेज करें। तो
1: जो
2: लास्ट
1: भी फंड
2: हाँ
1: रेज करते
2: फंड
1: हैं
2: रेज करते
1: वही
2: हैं। हाँ
1: पैसों से, हम
2: और
1: वही जो मंदिर में जो भी है उसमें इस्तेमाल
2: हाँ,
1: करते
2: और
1: हैं।
2: हमारा एंड गोल भी फंड रेज करना है, डोनेशन करना है। तो जो बड़े वेन्यू थे वो हमारे लगातार हमारी कॉस्ट बढ़ रही थी। तो इस बार हमने सोचा कि, और इस बार हमारा टाइम भी बहुत शॉर्ट था प्रिपरेशन का, क्योंकि पहले यूजुअली हम 4 5 6 महीने पहले हम डिग्नेटरीज को इनविटेशन भेजते थे और उसके बाद सारा वो मैटर सेटल होता था। बट इस बार क्योंकि बोर्ड चेंज हुआ अप्रैल के एंड में और हम लोगों ने जुलाई में किया,
0: जी
2: तो हमारे पास टाइम कम था। तो हमने इसको पेरेलन
0: एब्सोल्युटली।
2: पार्क में सेलिंग निकाल के अभी हम लोग उसको कैथेड्रल, द होली फैमिली चर्च, 123 नेल्सन रोड में जुलाई
0: जी
2: 18 को हम होस्ट कर रहे हैं। सोशल विल स्टार्ट एट अबाउट 5:30, जहाँ पे आप लोग आ सकते हो 5:30 से 6:30 के बीच में, और एपिटाइज़र और ड्रिंक और सोशलाइज का आप आनंद ले सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होगा 6:30 to 7:30, वी हैव प्लानड लाइक वेरियस प्रोग्राम विद इन दैट 1 आवर। उसके बाद हम डिनर स्टार्ट करेंगे, सपर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को ए करके। बट इस बार हमने म्यूजिकल नाइट भी ऐड की हुई है, और काफ़ी सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम ही हुआ करता था कि बच्चे कहाँ रखे हम काफ़ी, क्योंकि काफ़ी सारे यंग फैमिली अब सास्कटून में है. तो इस बार बोर्ड ने थोड़ा यूनिकली सोचा है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे को कहाँ रखे, तो हमने इस बार हम ऑफर कर रहे हैं फ्री मूवी नाइट फॉर द किड्स हुज पेरेंट्स आर अटेंडिंग द बैंक्वेट. सो बी प्लीज रिमेंबर कि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स बैंक्वेट में आ रहे हैं. और हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोग्राम डिज़ाइन किए हो किड्स के लिए ताकि वो बोर ना हो
3: जी.
2: और उसी हॉल में हमने सुविधा रखी हुई ताकि फिर पेरेंट्स को दो जगह जाना ना पड़े.
1: तो अभी हम थोड़ा ये बहुत ही अच्छी है आपने जो बात कही कि हमेशा से ये होते हैं यंग जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों को ऐसे इवेंट्स में जाना होता है लेकिन बच्चों का यहाँ सबको पता है. तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छा आप लोग को रिस्पॉन्स मिला है, शायद टिकट्स भी सारी.
2: सो यूजली क्या होता है कि हमारा जो टिकट डिमांड होती है सम रीज़न लास्ट टू वीक्स में होती है, बट इस बार आई एम वेरी हैप्पी कि इवेंट इज सोल्ड आउट, देर इज़ नो मोर टिकट अवेलेबल. सो वी एवर डिड नॉट बाय द टिकट दिस ईयर, आई एम सॉरी टू से दैट देर विल बी नो मोर टिकट अवेलेबल, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज आप जब भी पोस्टर आए अलीबर्ड में आप टिकट बाय कीजिए. बस इस बार के लिए हमारा इवेंट सोल्ड आउट है.
1: हाँ, तो चलिए जो भी हमारे लिसनर्स इस इवेंट में जाने वाले हैं, तो जैसे प्रज्ञेश जी ने कहा 18th जुलाई को है, तो आप समय से पहले थोड़ा पहुंच जाएगा और ये जो है पूरा बैंक्वेट उसका फ़ायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए और बच्चों का भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है. प्रज्ञेश जी, आपकी जो मेहनत है वो मुझे लगता है अभी से रंग दिखाने की शुरुआत कर दी है और ये सब जो है हम कम्युनिटी के लिए ही करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है.
2: और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वो मेरी मेहनत नहीं है
1: जी, जी,
2: वो पूरे बोर्ड और कम्युनिटी की मेहनत है, क्योंकि पर्दे के पीछे बहुत ही लोग
3: उसके पीछे
2: काम कर रहे हैं दिन डे एंड नाइट. सो या आई वांटेड टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ आवर वॉलेंटियर एंड ऑल द कम्युनिटी मेंबर हु आर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट यू नो दिस बैंक्वेट इवेंट. सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल. और मैं दो चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग जुलाई 22nd को इंडिया से हम मैजिशियन बुला रहे हैं. सो थ्री एसोसिएशन मिलके इस मैजिक शो को कंडक्ट कर रहे हैं, मराठी एसोसिएशन, ICCA एंड हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचुअन. तो इंडिया से मैजिशियन आ रहे हैं, उन्होंने थ्रू आउट कैनेडा वो टूर पे है अभी, एडमिंटन से वो सास्कटून आ रहे हैं. तो ये टिकट इवेंट है, वहाँ पे हम लोगों ने छोटे बच्चों की टिकट मतलब 18th ईयर की टिकट $10 रखी हुई है, एडल्ट की अबाउट $15 है. एंड देन उसके बाद हम वर्कशॉप भी ऑफर कर रहे हैं, जिन बच्चों को मैजिक ट्रिक सीखनी है वो मैजिक शो के बाद हम वो भी ऑफर कर रहे हैं, और उसकी टिकट $25 है. तो
3: इस शो का वेन्यू कहाँ पे?
2: हाँ, वेन्यू इस शो का है गीता भवन.
3: अच्छा जी.
2: हाँ, और दूसरी एक बात जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बार हम लोग जन्माष्टमी भी बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं
3: जी,
2: तो वो सितंबर लॉन्ग वीकेंड में होगा, तो आप प्लीज़ अपना आपका कैलेंडर ओपन रखिएगा. तो आई थिंक हम लोग अभी टेंटेटिवली सोच रहे हैं कि सितंबर 6th या 5th के में से कोई एक दिन चुने, और वो लॉन्ग वीकेंड है, तो प्लीज़ आप अपना कैलेंडर खाली रखिएगा.
1: थैंक यू सो मच प्रज्ञेश जी, आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को भी दी हैं.
3: और मुझे अभी अभी अपर्णा जी का भी मैसेज आया और उन्होंने कहा कि मेरा नमस्कार कहना प्रज्ञेश जी को, और उन्होंने भी एक गाना बजाने के लिए डेडिकेट किया है, तो इस गाने के बाद हम उनका गाना प्ले करेंगे.
1: जी ज़रूर, हमारा प्रोग्राम सबको पसंद आ रहा है. और अगली जो रिक्वेस्ट है वो हमारे लिसनर्स का, हमारे होस्ट रह चुके हैं
3: जी
1: सूर्यवंशी जी, उन्हीं की फरमाइश का फिल्म है ख्वाब, उसका मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में गाया हुआ गाना है तू ही वो हसीन है, डेडिकेटेड टू हिज वाइफ.

0: जी हाँ, तू ही वो हंसी है और हमारे लिसनर्स हमें लगातार मैसेजेस कर रहे हैं और सबकी बारी बारी हम फरमाइशें सुनाएंगे। और विनीत जी, अब हम हमारे जो गेस्ट आए हैं प्रज्ञेश जी को थैंक्स कहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे लिसनर्स को आपने बैंक्वेट के बारे में काफ़ी सारी अच्छी जानकारी दी और मंदिर में भी जो एक्टिविटी हो रही है और फ्यूचर में आप जो भी नए नए इवेंट्स लेकर आ रहे हैं उनके बारे में हमारे लिसनर्स को आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और बस आपका हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आप यहाँ पर आए।
1: या मैं भी हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचुआन की ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया और बैंक्वेट के बारे में बताने का जो भी टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बिहाफ ऑफ HSS।
0: और आप भी हमारे शो के बारे में आपके दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हर शनिवार को 11 से लेके ठीक 12:30 बजे तक संगीत माला जो है वो CFCR 90.5 FM पर आता है। और जैसे आपने कहा कि आप भी रेगुलरली सुनते हैं लेकिन आपको पता नहीं था कि कौन सी चैनल पे आ रहा है, तो अभी आपको भी वो पता चल गया है। तो आप भी हमारे हिंदी जो ये बॉलीवुड के गानों का प्रोग्राम है जो हम कितने सालों से लगातार कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइएगा। नए जो लोग भी लोग आ रहे हैं, इंडिया से कनेक्ट रहने के लिए ये भी एक अच्छा जरिया होता है कि जो गानों से, हिंदी बॉलीवुड मूवी से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं।
2: एब्सोल्युटली मेरी तरफ से भी
0: कभी मुलाकात हो ही जाएगी।
2: प्रज्ञेश जी,
0: आप प्रोग्राम लेकर आइएगा।
2: एब्सोल्युटली मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, स्पेशली आज के इस समय में लोगों के पास समय नहीं होता, फुर्सत नहीं होती है, और उसमें भी आप अपना कीमती समय इस हमारे समाज को दे रहे हैं और यहाँ पर आके आपने हमें बहुत सारी बातें भी बताई, तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर द एनुअल बैंक्वे, वेजिटेरियन बैंक्वे फेस्टिवल फॉर यू।
1: थैंक यू, विल सी यू ओवर देयर।
2: थैंक यू। तो नीपा जी, अगला गाना प्ले करते हैं। और हिंदू समाज, हिंदू सोसाइटी ऑफ सस्कैचुएन की ही बोर्ड मेंबर है हमारी अपर्णा जी, उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है राजेश जी को। और गाने के जो बोल हैं वो है चिंगारी कोई भड़के अमर प्रेम से। तो हाँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं
0: ऑफ कोर्स
2: एब्सोल्युटली

0: Begin on the riverbank with Shakespeare on the Saskatchewan. It's Love and Tyranny from July 14th to August 23rd. Set sail on a high seas romantic comedy adventure with a swashbuckling staging of Much Ado About Nothing, and delve into a world of conspiracy and torn loyalties in a modern day take on the original political thriller, Julius Caesar. Don't miss unforgettable live theater, stunning views, and the magic of a festival under prairie skies. Get your tickets at shakespearesask.com.
1: Shane's Surplus World brings the joy of surplus to Saskatoon. Shane sells brand new overstock and quality returns from a big, big major box store. Find brand name items at discount prices with new sales happening weekly, and save 50% or more on clothing every day. It's everything you could want, including a great deal. Shane's Surplus World at 120 1500 Quebec Avenue in Saskatoon and 521 Main Street in Bigger. Follow them on Facebook, Instagram, and TikTok for all the latest finds.
2: I feel like pizza.
3: I feel like beer.
4: This does not have to be a paradox.
5: Who are you?
4: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I tried to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
0: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
4: The gold, eh?
6: CFCR 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. So you might notice intermittent broadcast changes during this time. But you can always reach us with any questions at 306-664-6678.
7: Welcome back to Sangeet Mala, jo aap sun rahe hain CFCR 90.5 FM par mere yani Nipa ke saath aur mera saath de rahe hain
8: aap hi ka host aur dost Vineet.
7: Vineet ji, aaj ke program mein humne kaafi sare gaane cover kiye hain aur hum Amit Kumar ji ke bare mein baat kar rahe hain. और अमित कुमार जी एक ब्लेस्ड कह सकते हैं कि क्योंकि उनके पिता जो थे वो किशोर कुमार जी थे, और किशोर कुमार जी फिल्म इंडस्ट्री में सबके ऊपर रूल कर रहे थे. उनकी आवाज़ इतनी नेचुरल थी, और अमित जी को भी किशोर कुमार जी ने काफ़ी ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन वो बोलते हैं ना बचपना होता है तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था. लेकिन काफ़ी सालों के बाद में उन्होंने फिर बाकायदा तालीम ली थी, और फिर उन्होंने सिंगिंग में अपनी जो 80s और 90s में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ ही थी, और उन्होंने अनिल कपूर के पीछे भी अपनी आवाज़ दी है, आमिर खान के पीछे आवाज़ दी है. वैसे उनके
8: संजय दत्त
7: काफ़ी सारे सिंगर्स जो थे उनको साइड पे रख के तब वो रूल कर रहे थे, और आज भी उनकी आवाज़ हम सब को अच्छे से याद में रहती है. लेकिन उन्होंने फिर देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऐसी है ना कि कभी कभी आपके लिए ब्लेसिंग्स हो जाती हैं कि भाई आप किशोर जी के बेटे हो तो, और कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि इनकी आवाज़ किशोर कुमार की है. उन्होंने काफ़ी गाने जो गाए हैं वो सबको लगा है कि किशोर कुमार ने गाए हैं, और फिर पॉलिटिक्स तो हमेशा सब जगह पर होता ही है. तो उन्होंने फिर एक फैसला लिया था कि वो 1996 के बाद उन्होंने फिल्मों में गाने का बंद ही कर दिया था.
8: ऐसा क्यों?
7: देखिए, वो जो कहते हैं कि वो जिस तरीके के गाने गाते थे और वो जिस एरा से आए हैं, तो वो उसमें गाने में जो मीनिंग था, जो उसके बोल थे, जो म्यूज़िक था, वो बहुत ही डीप हुआ करता था. और आजकल के गानों के साथ में अगर आप बोल को देखें,
8: बड़े खोखले होते हैं.
7: जी हाँ, तो अच्छे सिंगर्स जो होते हैं वो ऑफकोर्स ऐसी बातें पसंद नहीं करते, हालाँकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज शो ज़्यादा वो परफॉर्म करते हैं. और वही तो है कि वो जब लाइव शो करते हैं तो वो पूरे शो की जान होते हैं, लाइक अ शो स्टॉपर. तो अमित कुमार जी को किशोर कुमार जी ने जब लॉन्च करने वाले थे तो सायन के षणमुखानंद हॉल में उन्होंने एक स्पेशल बड़ा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उसका नाम था डैडी किशोर विथ सनी अमित टुगेदर. और उस वही है कि वो उनको लॉन्च करने के बाद उनको काफ़ी पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर आई हुई थी, और उनको काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट बढ़ रहे थे, और सब लोग उनको कॉल कर रहे थे कि भाई हमारी फिल्मों के लिए आपको गाने हैं. लेकिन वो तब इतने डर गए थे कि वो जब राजकुमार जी को पता चला कि वो बॉबी बनाने वाले थे, तो उनको ऋषि कपूर के पीछे नई आवाज़ चाहिए थी. तो उस लक्ष्मीकांत प्यारालाल जी थे, उन्होंने कहा कि ये अमित कुमार है जो किशोर जी के बेटे हैं, उनकी आवाज़ आप ले सकते हो। तो अमित जी तब छोटे थे ना, तो वो इतने डर गए कि वो किशोर कुमार जी को बताए हुए ही भाग गए कोलकाता, और इसकी वजह से उनके हाथ से ये जो बड़ा प्रोजेक्ट था वो चला गया, और वो फिल्म के सारे गाने
8: शैलेंद्र
7: सिंह को, और फिर अमित जी को काफ़ी डांट पड़ी थी किशोर कुमार जी की, लेकिन फिर वो वापस से बॉम्बे में आ गए थे, और जैसे कहा कि कुमार गौरव के पीछे उनकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छे से सूट हो रही थी। और देखिए बातें इतनी सारी है कहने के लिए, लेकिन हमें रिक्वेस्ट भी तो सुनानी है, तो जो अगला गाना है वो हमारे लिसनर कल्पेश जी और नीपा जी सुनना चाहते हैं। फिल्म आई थी थानेदार, इस फिल्म का जो गाना है, और इसमें जो बच्चे की आवाज़ है वो बप्पी लहरी जी की बेटी रीमा लहरी की आवाज़ है, तो सुनते हैं कल्पेश जी और नीपा जी की फरमाइश का ये गाना।

0: देखिए, जीना है तो हंसकर ही जीना है। खुशी और गम जो है ना, वो हमारे ज़िंदगी के एक ख़ास पहलू है होते हैं, तो हमेशा गम में भी खुशी ढूंढना वो ज़रूरी होता है। और ये एग्जैक्टली यही गाने के बोल हमें बता रहे हैं कि अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा से डटकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। और अमित जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अमित कुमार जी के लाइफ में उनके किशोर कुमार जी का बहुत ही बड़ा योगदान था। और उनको एक ज़िंदगी पर एक बहुत ही दुख रहा था कि जब किशोर कुमार जी का निधन हुआ, तो उस पूरे वो जब टोरंटो में वो शो कर रहे थे।
1: अच्छा
0: जी हाँ, तभी की बात है कि वो किशोर कुमार जी अपने कमरे से आए और अमित जी को पूछा था कि तू जल्दी वापस आ जाएगा ना, ऑल द बेस्ट। और क्या, तो अमित जी को भी जरा और लगा था कि उनकी ये जो किशोर कुमार जी की डेथ थी वो सडन डेथ हो गई थी।
1: तो टोरंटो में शो कौन कर रहा था?
0: अमित कुमार जी।
1: जी हाँ, अच्छा,
0: अमित कुमार जी का।
1: और किशोर जी हिंदुस्तान में थे?
0: जी हाँ, वो इंडिया में थे। और वही बोलते हैं ना कि अंदर से कुछ किशोर जी को भी लगा होगा कि शायद मैं मेरे बेटे को पहले ये आखिरी दफ़ा देख रहा हूँ, कि वो सुबह जल्दी उठकर वो उनसे मिले और उनसे बात भी की। तो वही है कि बस किशोर कुमार जी के जाने के बाद अमित जी पूरे से टूट गए
1: जी।
0: और बाद में मैंने जैसे कहा कि आर डी बर्मन जी ने और बप्पी लहरी जी ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया था, और राजेश खन्ना जी ने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया था। तो जो अगला जो गाना है, बस वही किशोर कुमार जी के ही गाने हमें सब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। फिल्म आई थी मेरे जीवन साथी, इसे फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं अशोक जी। वो ये गाना ओ मेरे दिल के चैन वो डेडिकेट करना चाहते हैं उनकी वाइफ शैल जी को, और यही गाना सेम सुनना चाहते हैं इंडिया से नरेश जी। तो इन सब की फरमाइश का गाना हम सुनवा देते हैं
1: किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, आर डी बर्मन का म्यूजिक, मजरू सुल्तानपुरी के लिरिक्स। लेट्स हियर द सॉन्ग।

0: चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, बस जब दिल आ जाता है तो बस दिल को दुआ ही करनी होती है कि जो उनके दिल में बसी हुई है वो उनको मिल जाए।
1: कभी कभी मुझे लगता है कि आपको शायर होना चाहिए था। हर गाने के बाद आप जो जुमला फिट करती हैं उसका क्या ही कहना।
0: जी विनीत जी, आपको भी पता है हम सब आर्टिस्ट है और कलाकार जो होता है उसका जज्बाती होना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंसान जज्बाती होता है वही आर्टिस्ट बन जाता है। ये मैंने नहीं कहा है, ये हमारे मदन मोहन जी का कहा हुआ जुमला है
1: जी।
0: कि वो आर्टिस्ट ही नहीं हो सकता जो जज्बाती नहीं होता। तो वही है देखिए, और ये आपने जो कहा तो मेरे दिल के तार भी छू लिए आपने।
1: धन्यवाद।
0: और अमित कुमार जी का ही एक बहुत ही आज भी सबको प्यारा जो गाना लगता है वो फिल्म आई थी बालिका बधू, और बालिका बधू का ये गाना इतना सूदिंग, इतना सुरीला है। और स्क्रीन पर तो सचिन और रजनी शर्मा के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था, और एक काफ़ी फेमस टीवी सीरियल थी उसमें भी ये गाने बहुत ही चलते हैं,
1: बड़े अच्छे लगते हैं।
0: तो यही गाने के बोल हैं बड़े।

0: कितना प्यारा गाना था और ये गाना मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को पसंद है, उसमें से अनीता जी, प्रकाश जी, बिंदु जी और ऑफकोर्स मुझे भी ये गाना बेहद पसंद है। और अमित जी के बारे में बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो रोशनी है कि जो हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में उनका भी बहुत बड़ा सा योगदान था। उन्होंने काफ़ी इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और फिल्म आई थी कुर्बानी, उसमें जो गाना है ना एक था लैला और लैला, वो अमजद खान के पीछे उन्होंने आवाज़ दी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो तड़कता फड़कता गाना है वो हम हमारे लिसनर्स को सुना दें और उनकी भी वर्सेटाइलिटी हम लोग दिखा दें कि वो हमेशा से सूदिंग गाने गाते हैं लेकिन ऐसे भी गाने वो गाया करते हैं।
1: एब्सोल्युटली, फ्रॉम द मूवी कुर्बानी, इंदिवर के लिरिक्स, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, अमित कुमार के साथ कंचन जी ने भी इस गाने में गायकी करी। तो लेट्स हियर द सॉन्ग।

0: जी हाँ, देखिए कितने सारे अच्छे अच्छे गाने। और ये गाने के बाद में उनने अपनी स्टाइल चेंज की, और हमेशा से वो सूदिंग गाने गाते थे, लेकिन अभी ये गाने के बाद में उन्होंने प्रूव
1: किया कि तड़क भड़कते गाने,
0: सब किस्म के गाने गा सकते हैं।
1: एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले गाने की ओर।
0: हाँ जी,
1: वो कौन सा गाना है बताइए?
0: अगला गाना देखिए, मैंने कहा जैसे अमित कुमार जी ने कुमार गौरव के पीछे आवाज दी थी, वैसे अनिल कपूर के लिए भी काफी सारे उन्होंने गाने गाए थे
1: जी।
0: और उसमें से एक गाना जो है फिल्म आई थी तेजाब, उसी का गाना है कह दो कि तुम हो मेरी वरना।
1: लेट्स हियर द सॉन्ग संग बाय नन अदर देन अमित कुमार एंड अनुराधा पौडवाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक फ्रॉम द मूवी तेजाब।

0: कह दो कि तुम हो मेरी वरना देखा, कितने सारे अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। और यहाँ पे मैं एक गाना भूल गई थी, फिल्म आई थी जीवा, उसका जो आशा भोसले जी के साथ में उन्होंने जो गाना गाया है, क्या बेहद सुरीला गाना है और मुझे बहुत पसंद है। शायद आपने भी ये गाना सुना होगा, गाने के बोल हैं रोज़ रोज़ आँखों तले। तो फिल्म जीवा संजय दत्त के पीछे पिक्चराइज किया गया है मंदाकिनी और संजय दत्त के ऊपर, और गाने के बोल हैं
1: रोज़ रोज़ आँखों तले। लिरिक्स हैं गुलजार साहब के और म्यूज़िक कंपोज़र हैं आर डी बर्मन साहब।

0: क्या बेहतरीन गाना था, लेकिन अमित कुमार जी की आवाज़ को हम सुनने के लिए ही इंतज़ार कर रहे थे। और देखिए अभी शो ख़त्म होने को आया है और हमें अभी अभी कॉल आया था अर्शमीत जी का। वो कहते थे कि वो आज प्रोग्राम इतने अच्छे से सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि शायद लेट हो गया है। तो मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया गाना है, फिल्म आई थी नरसिम्हा, उसका ये गाना है जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। तो उनकी फरमाइश का हम ये गाना उनको सुना देते हैं और उससे पहले हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों को। हमें ये हमेशा से बताना होता है कि आप जब कॉल करते हो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी आप क्या कहते हैं हौसला
1: अफजाई,
0: हाँ हौसला अफजाई बढ़ती है और हमें प्रोग्राम करने में बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही हमारा प्रोग्राम हमेशा से सैटरडे को 11 से 12:30 तक सुनते रहिएगा। और हम आपसे आज्ञा लेते हैं, हमेशा की तरह ईश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बस हमें उसका धन्यवाद करना है। एटीट्यूड लाइफ में रखना जरूरी है, लेकिन
1: ग्रेटिट्यूड के साथ। एब्सोल्युटली दोस्तों,
0: बाय बाय, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मिलित जी मिलते हैं,
1: एब्सोल्युटली मेरी तरफ से भी अलविदा दोस्तों, और आपसे मिलेंगे हम अगले शनिवार को ठीक सुबह 11 बजे सस्केटून लोकल टाइम लाइव ऑन एयर हमारे स्टूडियो से। तब तक के लिए शब्बा खैर,
0: टाटा बाय बाय, सायोनारा।

0: अस्सलाम वालेकुम सास्कटून, मैं हूं
1: आपका दोस्त स्टूडियो सीजन 9
0: आपका दोस्त उमर। और हमारे प्रोग्राम का आज जो मौजू है, सिर्फ दो ही प्रोग्राम के मौजू हो सकते हैं, और वो हैं हम जो हैं वो कनाडा के जो सॉकर मैच इस वक्त चल रहा है उस पे बात करेंगे, और हम हमारे हो सकता है कि प्रोग्राम के दौरान ही जो है वो कनाडा जो है वो जीत जाए और हम उसकी खुशियां जो हैं वो यहीं पे दुबाला करेंगे। और जो दूसरा हमारा हिस्सा होगा प्रोग्राम का वो होगा हमारे जो काइट फेस्टिवल है कल होने वाला है, उसके लिए जिसके लिए पूरी टीम ने भरपूर तैयारियां की हैं, और उसकी कुछ तैयारियों के मनाजिर जो हैं वो मैं आज अपने कुछ फेसबुक लाइव पे भी दिखाऊंगा, और हम उसको उन मोमेंट्स को जो है वो इन्जॉय भी करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि टीम कितनी इसके लिए अंथक कोशिशें कर रही है और हम इसको किस तरीके से ये एक दो महीने का प्रोग्राम जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसको ऑर्गेनाइज़ करने में जो हमारी मेहनत के साथ साथ जो टाइम और लोगों की जो मेहनत साथ हमारे साथ रंग लाती है उसका जो है वो सानी कोई नहीं होता। हम दुआगो हैं कि कनाडा आज जीते और हमारी टीम जो है वो सुपर एट में पहुंचे, और हम जो सुपर एट में पहुंचने के बाद कनाडा का मुकाबला जो है वो फ्रांस या पोर्चुगल से मैच होगा। हम आज एक ही आवाज़ लगाएंगे, यकजा होके सब कहेंगे गो कनाडा गो। और वक्त ये भी ना समझिएगा कि अभी जो है वो वक्त नहीं है, गेम जो है हमेशा जो भी गेम और स्पोर्ट्स होती है उसके लास्ट मिनट तक गेम के रिज़ल्ट को हम जो है वो ये नहीं साबित कर सकते कि गेम क्या चल रही है और गेम का सिलसिला जो है वो कहाँ से जुड़ेगा और चल पड़ेगा। जो इनकी अगर हम देखें तो कनाडा ने पहला जो है वो राउंड बहुत ज़बरदस्त खेला था, और पहले हाफ में जो है वो जो है वो बहुत इस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि किसी टाइम पे भी कनाडा का गोल स्कोर होने का जो है वो चांसेस थे और वो जो है वो गोल स्कोर हो सकता था। लेकिन अभी जो है वो मैच की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, और हम उस पे जो है वो नज़र डालेंगे कि मैच की सिचुएशन अभी क्या चल रही है। मैं अभी अपने एक सॉन्ग की तरफ जाऊंगा और बसंत के हवाले से ही हम सॉन्ग को कोशिश करेंगे कि हम प्ले करें, और बसंत जो है वो कैसे चलेगी

बसंत के जो खूबसूरत जो सॉन्ग इस साल जो चले थे, वो ही हम सब कोशिश करेंगे कि हम उन्हें प्ले करें और हम उन्हें बताएं कि बसंत कैसी होती है। हम सब जो है सास्काटून को मिलके ये भी बताएंगे कि लाहौर में, पाकिस्तान में कैसे बसंत मनाई जाती है और उसका सिलसिला कैसे चलता है। अभी हम अपनी जो है एक बसंत का जो इस साल का ऑफिशियल एंथम था, हम उसको प्ले करेंगे। फिर आई बसंत।

आवाज़ का सिलसिला लगता है कि कुछ मुनकता है, और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है वो आवाज़ को दोबारा से, क्योंकि दूसरे पतली का गाना लग गया था, वो भी एक रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं उसको ज़रा लेटर प्ले करूँगा। लेकिन इस टाइम पे जो है हम कोशिश करेंगे कि हम बसंत को जो है उसके सॉन्ग को प्ले करें।

वेलकम बैक जी। और जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। हम जेन ज़ी की बातें कर रहे थे, मैं भी काफ़ी मैच में खो गया था, इसलिए गाने पे गाना और दाने पे दाना चला दिया था। और जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला आगे कुछ बढ़ इस तरह पा रहा था कि वो चेंज हो गया। वेल डन कैनेडा, यू रीच्ड टू दिस पॉइंट, वी आर विद यू, यू डिड वेरी वेल, फैबुलस, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इससे पता चलता है कि गेम कितनी कंपेटिटिव है, एक मिनट में गेम चेंज हो सकती है, थिंग्स कैन बी चेंज्ड। और इस वक्त मोरक्को जो है वो मैच जीत गया है, और वो 3-0 से जो है वो मैच जीत गया है। जो गोल स्कोर किए वो रहीमी ने किए, और उन्हाई ने 2 गोल किए, और मैच का जो है वो पासा जो है वो बिल्कुल पलट दिया। पहला गोल 50 मिनट में हुआ और दूसरा 82 मिनट में, और एक्स्ट्रा टाइम जो 90 मिनट्स के ऊपर मिलता है उसमें रहीमी ने गोल किया। डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्टर्स, कनाडा हैज़ प्लेड वेरी वेल, मेक अस प्राउड। हम सब जो है अब भी कहेंगे गो कनाडा गो, और you made us proud in this FIFA World Cup, and all over the world when you comes to the best of like 16, obviously you are the best teams who came on the top. So main sabko kahunga, you don't have to be think of this way how far we went with this team. There are superstars in our team, in the Canada team. They made us proud and they made us call for every day. Hum apne program ka silsila aage badhayenge kyunki hame kal jo hai ek bahut hi khoobsurat program karna hai, aur hum wo jo hai wo apne jo khoobsurat program ko ka silsila jo hai wo kal हम चाहेंगे कि आप सब उसमें शामिल हों और इस प्रोग्राम को जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। और मेड अस प्राउड कि हम जो है वो अपना कल्चर सबके साथ शेयर करेंगे, और हम अपने कल्चर्स को जो है वो प्रमोट भी करेंगे, और दूसरों के कल्चर को समझने की जगह देर विल बी फूड फेस्टिवल्स, देर विल बी डांसिंग, देर विल बी भंगड़ा और सिंगिंग का सिलसिला साथ साथ चलेगा, और खाना और गुड्डीबाजी तो होगी और चलता रहेगा सिलसिला यूं ही बोकाटा का। हमारी जो खुशियों का सिलसिला है वो छोटी छोटी यही खुशियां हैं। सास्कातून एक छोटा सा शहर है और सब इसकी खुशियों में शामिल होते हैं। और कल एक इस तरह का दिन है क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम का टाइम स्केड्यूल चेंज हुआ इस बरसात के मौसम में, ये जो पतझड़ लग गई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और हम जो है उस बसंत को जो है वो थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। हम एक और बसंत का गाना अपनी जो है आवाज़ में वो पेश करेंगे, हुमैरा अरशद की आवाज़ में, और हमारे अरशद की आवाज़ एक जानी पहचानी आवाज़,

Welcome back to your thank you, Canada, for making us proud and to reaching to this point. We love you. We respect you. An amazing journey for this World Cup. You did your best to reach to this point. Keep your belief in yourself. We will do best and come back as a harder team. अब हम सिलसिला हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया और थोड़े वक्त में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसीलिए कहते हूँ कि हमें जो है वो आगे का सिलसिला फिर भी देखना होता है और आगे का सिलसिला चलना होता है. जो बसंत नज़दीक आती है हमारा सिलसिला जो है वो और दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि हम अपनी जो है वो गुड़ियों को कैसे आसमानों तक पहुंचाएंगे और इस कल्चर का हिस्सा कैसे बनाएंगे कि हम गुड़ियां कैसे उड़ा सकते हैं.

मैं अगर अगर देखता हूँ कि जो गुड़ियों का या काइट का जो सिलसिला हमारे हाँ चलता है वो पेपर काइट होती है, और यहाँ पे जो है वो प्लास्टिक की काइट होती है, जिसको उड़ाना एक मुश्किल काम कभी कभी इसलिए हो जाता है कि हमने कभी उड़ाई नहीं है, बट फेस्टिविटी के लिए और उस कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जारी हो सारी रखें। एक और बड़ा बसंत के हवाले से मैं सॉन्ग कहूँगा, सिंगर नासिर अहमद वाजह की आवाज़ में है, गुड्डी उड़दी ना।

0: ये था हमारे आज प्रोग्राम का, आज वक्त ख़त्म होता है और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, सिलसिला रहेगा गुड्डियों का और बसंतबाजी का। आपको मिलेंगे रोटरी पार्क सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। खानों का सिलसिला वहाँ पे हो गया, सबसे बड़े हमारे जो बारबेक्यू के इस वक्त सास्काटून के हैं, बारबेक्यू जंक्शन, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा सेवर सुपरमार्केट, गार्डन फार्मेसी, बहुत शुक्रिया सिटी ऑफ सास्काटून और कल्चर मल्टीकल्चरल का, वो हमारे साथ इसमें स्पॉन्सर्स के एज ए स्पॉन्सर हमारे साथ शामिल हैं। USW का बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाएं। आज हम उसकी तैयारियों का सिलसिला शुरू कर देंगे और कल हम इसको मनाएंगे और अपने साथ इसको सिलसिले को जारी रखेंगे। आप लोगों के लिए आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहनी चाहिए और हम इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे। सिलसिला जो है वो कल आपके साथ जुड़ेगा और कोशिश करेंगे कि हम अपने फेसबुक लाइव से अब आपको वो सिलसिला दिखाते रहें। कुछ तैयारियों के मनाजिर भी दिखाएंगे, गुड़ियों की आज कुछ बातें करेंगे वो दिखाते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कनाडा का लिए जो है वो थोड़ी सी मायूसी का दिन है। लेकिन बी ब्रेव, वी आर विद यू कनाडा टीम, और हम विल कीप आवर फ्लैग हाई, और उसी हाई स्पिरिट्स के साथ हम कल का दिन अपनी डाइवर्सिटी के साथ, अपनी खुशियों के साथ, पाकिस्तान के हम नवा लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला मनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल एट रोटरी पार्क फ्रॉम 11 to 8। थैंक यू वेरी मच।
1: CFCR 90.5 FM in Saskatoon is currently conducting on-air transmitter testing. You may notice intermittent broadcast changes during this time. You can reach us with any questions at 306-664-6678.
2: Saskatchewan, get ready for the concert event of the summer. Saturday, July 12th at SaskTel Center in Saskatoon. Experience one epic night featuring Grammy Award-winning superstar Chance the Rapper. Joining him are Indigenous hip-hop icon Snotty Nose Rez Kids and Saskatchewan's own rising star, KL. Three incredible artists, one unforgettable night, thousands of fans, one massive celebration of music, culture, and energy. Don't miss your chance to be there. Get your tickets now before they sell out. Saturday, July 12th. SaskTel Center.
3: Sask Made Marketplace is the perfect place to experience farm-to-fork food with farm-fresh eggs, local produce, meat, and a variety of frozen on-the-go meals. There's also an ever-changing array of handmade, one-of-a-kind artworks, pottery, photography, books, and other artisan products. Visit Sask Made Marketplace at 1621 8th Street East at Gather Local Market or online at saskmade.ca to start your Saskatchewan farm-to-fork journey.
4: Summer is here, and the Saskatoon Symphony Orchestra is still your source for Saskatchewan's distinct, world-class, artistic musical voice. Share the joy, hope, and community of making music, and stay up to date on all the latest symphony news online. Plus, see the incredible lineup and subscribe to the latest season. The more you buy, the more you save. Give a gift, plan your next great night out, and make your life better with music. Visit SaskatoonSymphony.org today.
5: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.